आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 9 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

में घोड़ा। सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: मुझको खाना भी तो मिला है आधा, और इस आधे में से भी वो खा गया था।
1: खाना घर में थोड़ा खाने वाला

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 1 PM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

Yeah.

0: नहीं बताऊंगी।
1: तुझे दिल की बात बता दूं?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं किसी

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ऑफ द वीक शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार अंतरा मस्ती में सुनिए दिए गए अंतरे पर आधारित गाने। लाइव शो में पार्टिसिपेट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जो है 91-35-84-12-32 यानी 9135841232। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्कार नमस्ते सस्यकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर बहुत ही प्यारा शो जिसका नाम है स्टार ऑफ द वीक। और आज के स्टार मेहमान है हमारे अक्षय कुमार। हाल ही फिलहाल इनका जन्मदिन था 9 सितंबर को शायद, और तो सोचा क्यों ना अक्षय कुमार जी को लाया जाए, इसलिए आज उनके लिए महफिल सजाई गई है। आप सभी का वेलकम है, और सबसे पहले मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए, और जल्द से जल्द अक्षय कुमार जी के यानी कि पर फिल्माए हुए गाने मेरे पास भेज दीजिए सॉन्ग रिक्वेस्ट में। फिलहाल मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए, और ये गाना मेरी सुंदरता की मुराद जी यानी खुशी जी को स्पेशली डेडिकेट है दिल से, क्योंकि इसमें का एक एक जो वर्ड है, एक एक जो शब्द है सिर्फ उनके लिए ही है।

0: बिल्कुल सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा, सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा, सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा। वैसे मेरे पास बहुत दोस्त जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम करते हैं। और सबसे पहले आज इन जुड़ने वाली हैं खुशबू जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं खुशबू जी आपका। और इनके बाद जुड़ने वाले दोस्तों में हैं हमारे यानी कि मुबारक हुसैन जी, वेलकम करते हैं। और सुनील कोंडे जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है सुनील कोंडे जी। और साथ ही साथ अशोक देशमुख जी भी हैं, वेलकम करते हैं। और सुनील कोंडे जी, अपने गाने की डिमांड प्लीज सॉन्ग रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, मेहरबानी होगी आपकी। और मंगेश देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका मंगेश देशमुख जी। और हुकुमचंद जांगिड जी, ये कोटा राजस्थान से, वेलकम करते हैं आपका भी। और जुड़ने वाले दोस्तों में शामिल है हमारे दीपक कुमार गायकवाड़ जी, वेलकम करते हैं आपका दीपक कुमार गायकवाड़ जी। और आत्माराम पाटिल जी, वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ जुड़ने वाले दोस्तों में शामिल है गजानन सरोकार जी, अपने यानी पूरे ग्रुप के साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और सर्वेश भगत जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और विष्णु चंद्र जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है। और फूल भाग संजू भाव जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और सर्वजीत सेठी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। साथ ही साथ हमारे ईश्वरलाल मेहर जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और राजेश कुमार जी ग्रेटर नोएडा हबीबपुर से, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। आर्य सिंधी जी जुड़ चुके हैं, गांधीनगर गुजरात से, वेलकम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम। और हमारी नंदनी माँ जी, बहुत बहुत वेलकम है, आपका आशीर्वाद का बहुत जरूरत है, थैंक यू सो मच माँ जी, आपका वो इन प्यारा आशीर्वाद देने के लिए। और ज्योति खटवड़े जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। मनीषा शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है, क्या बात है, दोनों का मैसेज एक साथ। और बागेश्वर निषाद जी गोरखपुर से जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। अशोक देशमुख जी भी जुड़ चुके हैं, इनका भी वेलकम है। जाकिर खान जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं, सबसे पहले जो डिमांड है वो तीन दोस्तों का है, तीन दोस्तों में आप समझ गए होंगे, वो बहुत ही मतलब अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी और आत्माराम पाटिल जी। जी जी बिल्कुल आपने सही सुना, तो इनके डिमांड से ही आज का प्रोग्राम का आगाज करता हूँ, सुनिए।
1: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार,
1: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी।
1: आज का थीम है स्टार ऑफ द वीक, तो मुझे एक गीत सुनना है, फिल्म का नाम है एक रिश्ता और गाने का बोल है दिल दीवाना ढूंढता है एक हसी लड़की।
0: ये गीत लिया है।
1: सबसे पहले आपको
0: थैंक यू,
1: और आपकी सुंदरता की मूर्त को, और जितने भी हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
0: बिल्कुल सुनाएंगे। और इसी गाने में जैसे कि शामिल है हमारे सर्वेश भगत जी, ऑडियो सुनते हैं।
2: जय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी।
2: आज हमारा फरमाइश का फिल्म है एक रिश्ता, और गाने का बोल है दिल दीवाना ढूंढता है एक हसी लड़की को। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरतगंज जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, अमन भगत, वशोर भगत, आनंद शेखर, प्रकाश कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, आर जे अमन सर जी, सुंदरता किमूरत जी, आर जे वंशिका जी, आर जे आकांक्षा जी, आर जे सोनी जी, आर जे एम एस परमार जी, आर जे रत्ना जी, आर सभी आर जे, आर सभी भाई, आर सभी बहन, आर सभी लिसनर इसमें शामिल है, सभी को सुना दीजिए।
3: हेलो प्यारे आर जे अमन खान सर जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सप्रेम नमस्कार जी। मैं आत्माराम पाटिल, ग्राम लिहा, तहसील मलकापुर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से आज बिल्कुल आपके प्रोग्राम स्टार ऑफ द वीक में मैं भी एक गीत लेके आया हूँ सर, जो कि आज स्पेशल है कुमार सानू, और मुझे है सर एक रिश्ता, सिंगर है कुमार सानू और अलका याज्ञ जी, और म्यूजिक है सर नजीम सलाम जी का, वैसे गीत बनाया सुनील जी ने, और बोल कुछ इस प्रकार के है सर, दिल दीवाना ढूंढता है एक हसी लड़की। तो यह गाना अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर पर चित्रित है सर। सबसे पहले गीत मैं आपको आपकी सुंदरता की मूर्त को, और आज अशोक देशमुख जी है, सर्वेश भगत जी है, सैयद यूनुस जी है, दत्ता कदम जी है, और आपके साथ साथ बिल्कुल सभी उपस्थित सभी के लिए आज का गीत समर्पित है सर। तो बिल्कुल सुना दो,
0: सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बनाते हैं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन और फिलहाल बहुत से फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं। अमना खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अमना खान जी, खुशामदीद। और जुड़ने वाले दोस्तों में हैं निशांत राय बोले जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और नागेश्वर धाकर जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है। और लिखते हैं, अच्छा खैर बातें अड़ाई उनका, और ये क्या कहते हैं सर्वेश भगत जी, पहले इनके सुन लेते हैं।
1: जय अमन सर जी,
0: बोलिए जी।
1: शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी।
1: हमारा तीन भाई का फरमाइश, हमारा अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, तीनों भाई का फरमाइश अपने प्रोग्राम में जगह दिए, धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर,
0: वेलकम। और सुनीता गोग जी, वो गाना मैंने स्टार्टिंग में प्ले कर दिया है अपना ओपनिंग में, तो आप दूसरा गाना प्ले करवा सकती हैं, या अगर कहिए तो मैं अपने पसंद से आपके लिए गाना प्ले कर दूंगा, लेकिन वो गाना प्ले हो चुका है ऑलरेडी। और बता दूं, लिखते हैं कि शानदार फरमाइश सुनवाने के लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ जुड़ने वाले गोविंदा खंडाते जी हैं, वेलकम है गोविंदा खंडाते जी। और हुकुम चंद जांगड़ जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और अशोक देशमुख जी क्या कहते हैं,
2: धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। मुझे पता था कि आप ऐसे ही बोलेंगे, वैसे मैं भी नकल करता हूँ आपके बोलने का। फिलहाल ये फिर
3: अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी, तीनों दोस्तों की डिमांड बहुत ही प्यारी, हमें सुनवाने के लिए शुक्रिया। अमन सर जी, आपने प्ले करके हमें हम तक पहुंचाया, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी, गुजरात गांधीनगर से, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ, जो दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी आरिफ सिंधी जी। और बागेश्वर निशा जी, देखते हैं ओपनिंग सॉन्ग तो अच्छा था ही, ये भी गाना भी बहुत ही प्यारा है, धन्यवाद देते हैं। और अरुण मंडल जी, देखते हैं आरजे अमन सर जी हम भी जुड़ चुके हैं आपके प्रोग्राम से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अरुण मंडल जी राजकोट से। और आत्माराम जी क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं।
4: हेलो अमन सर जी, कहीं नहीं गए हैं हम,
0: अच्छा जी
4: बिल्कुल सुन रहे हैं, और खुशी की बात सर आपने हमारा सॉन्ग चला दिया, दिल से शुक्रिया। और एक बात, 50 दिन के बाद बारिश का आगमन हुआ है, अच्छा, तो सब माहौल खुशी ही खुशी है,
0: अच्छा।
4: मैं आत्माराम पाटिल, थैंक यू,
0: वेलकम जी। तो बारिश का आनंद लेते रहिए और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। ईश्वरलाल मेहर जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है। और पूजा भास्कर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और जुड़ने वाले दोस्तों में है रवि मोहड़े जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं रवि मोहड़े जी आपका भी। और हीरामन खिलाड़ी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं हीरामन खिलाड़ी जी। शायद इनका फीडबैक है, सुनते हैं क्या कहते हैं।
5: नमस्कार अमन सर जी, गुड इवनिंग, मैं हीरामन खिराड़े वाशिम महाराष्ट्र से, और अभी इस लाइव कार्यक्रम में मैं भी जुड़ गया हूँ सर, और बहुत ही सुपर से ऊपर फरमाइश चल रही है। हमारे मित्र, ज्येष्ठ मित्र आत्माराम पाटिल जी, अशोक देशमुख जी और सर्वेश भगत जी, तीनों दोस्तों की मिलीजुली फरमाइश सुपर से ऊपर। मैं हीरामन खिराड़े वाशिम महाराष्ट्र से,
0: धन्यवाद जी, वेलकम करते हैं। मंगेश दस मुझे देखते हैं, मिले जुले डिमांड बहुत ही प्यारी थी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और संगीता मुरकर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अगला जो डिमांड है दो दोस्तों की है, हमारे दीपक कुमार गायकवाड़ जी और नागेश्वर धाकर जी, सुनवाते हैं।
6: अमन जी नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आज अक्षय कुमार की फिल्मों के गाने हमें भेजना है, तो मेरा एक गाना है और फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, और गीत के बोल हैं, लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ से ताली, उपमा आया पितापोरी आली आली, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। शुक्रिया, ये सुना दीजिए गाना, धन्यवाद। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा से।
0: ओके जी, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल, मैं खिलाड़ी और तू अनाड़ी, वैसे फीडबैक भी मेरे पास आया हुआ। विष्णु चंद्र जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं कि अमन जी दिल थाम के बैठे हैं। जी जी बिल्कुल बैठे रहिए, फिलहाल गाना सुनाएंगे आपका भी। सुनीता गोपी लिखते हैं कि अमन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी सुनीता जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अशोक देशमुख जी, सरोज भगई, आत्मादम जी के पसंद, मुझे बहुत पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं। और ये क्या कहते हैं भाई, सुनते हैं।
1: अर्जय अमन सर जी, दीपक कुमार नटवार जी और नागेश्वर धाकर जी, दोनों भाई मिलजुल फरमाइश से शामिल किए, दोनों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका भी। और अनिल कश्यप जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
2: आरजे अमन सर जी, मैं अनिल कश्यप सिवान बिहार से जुड़ गया हूँ, कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छा,
2: मैं यहाँ बढ़िया हूँ और आपके प्रोग्राम का आनंद ले रहा हूँ। और आज का जो थीम है अक्षय कुमार स्पेशल, तो अक्षय कुमार स्पेशल में मैं भी अपना गाना सेंड कर चुका हूँ और अच्छा लग रहा है, और ये भी थीम बहुत ही बढ़िया है, थैंक यू भैया।
0: वेलकम जी आपका। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला, अच्छा इस बार देखते हैं कि डांसिंग सॉन्ग सुनकर तो मजा ही आ गया है। और जुड़ चुके हैं नाम है सुनील कुमार जी बागा बिहार से, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। अगला जो डिमांड है मंगेश देशमुख जी का है, सुनना चाहते हैं गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। अच्छा जी, सच में का, फिलहाल इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: मुखड़े पे काला काला चश्मा, ओ गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।
1: और दोस्तों रात 10 बजे आरजे कंसा जी के साथ अपने दिल का हाल यानी हाले दिल बताना ना भूलिएगा। हाले दिल में रोमांटिक गाने के साथ साथ अपनी वो जज्बात जरूर लिखें जो आपके साथ गुजरी है। अगर ये सैड भी सॉन्ग भेजेंगे लेकिन उसमें वो आपका दिल का हाल जरूर होना चाहिए, नहीं तो गाने रिजेक्ट हो जाएंगे आज आपके। तो दिल का हाल बताते हुए गाने की डिमांड जरूर करें रात 10 बजे।

0: वैसे फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं और निशाल अंगद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है निशाल अंगद जी। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है, ओके जी। और एम ताहिर साहब जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि अमन खान जी आपको तहे दिल से आदाब कबूल, आदाब आदाब सर जी। सर जी आपके शो के आपके लहजे की श्रेणी और अल्फाज की नजाकत का एक खूबसूरत संगम, आपकी गुफ्तगू में वो रवानी और अपनायत है जो सीधे दिल में उतर जाता है। थैंक यू सो मच सर जी। और फिलहाल मैं बता दूं कि गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त मंगेश सतमू जी की पसंद बहुत ही अच्छी लगी, उनको धन्यवाद देते हैं और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: अमन जी थोड़ी ग्राहकी थी इसलिए फीडबैक देने में मैं जरा लेट हो गया। मेरा गाना प्ले करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अमन जी आपको एक बार बताऊं कि मैंने गाना आपको जानबूझ के ऐसा दिया ताकि जल्दी बच जाए और जल्दी शामिल हो जाए। आखिरी वाला गाना अगर दूंगा तो आखिरी तक मेरा इंतजार करना पड़ता है और आखिरी में कितना देर बजे उसकी कोई गारंटी नहीं है। और हमारे आदरणीय भगत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और फीडबैक देने वाले सभी का धन्यवाद। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा मध्य प्रदेश से।
0: बिल्कुल जैसा गाना रहेगा वैसे तो प्ले हो, तो मैं भाई लाइन पर लेने स्टेप बाय स्टेप गाने प्ले करता हूँ, चाहे चाहे आप अभी भेजिए चाहे आप पहले भेजिए, उसमें कोई बात नहीं है। वैसे मंगेश दसमुख जी लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गाना प्ले करने के लिए। और इसमें लाल जी लिखते हैं एकदम झक्कास गाना है, मजा आ गया सुन के। और ये फीडबैक कहते हैं हीरामन जी।
2: आदरणीय अमन सर जी, मंगेश देशमुख जी इनके सुपर से ऊपर फरमाइश।
3: गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, हो गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तो बा खुदा खैर करे खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।
2: धन्यवाद मंगेश देशमुख जी इतना अच्छा गीत सुनवाने के लिए, दिल से धन्यवाद। मैं हीरामन खिराड़े वाशिम महाराष्ट्र से।
0: बिल्कुल। और यहाँ पे और भी फीडबैक है मेरे पास। अनिल कश्यप जी लिखते हैं गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा वाला गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और सुनील कुमार जी लिखते हैं कि ये भी पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, धन्यवाद देते हैं भाई साहब को। और आरिफ संजय जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड है। अगला जो डिमांड मुझे दिख रहा है हमारे यानी विभूति भूषण शरण जी का, अभी उन्होंने भेजा है भोली भाली लड़की खोल तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की। एंजॉय कीजिए इस गाने को, सच में ऐसे गाने भेजेगा तो जरूर जल्दी में प्ले हो ही जाएगा, क्योंकि भाई अभी खिड़की खुलवाना है ना इसीलिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बनाते। बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं। गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त हीरामन जी के फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देते हैं। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि जी ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। आपने जो जो आपका गाना इससे पहले आपने भेजा था, उसको मैंने रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि वो ना उदित नारायण जी का एल्बम का गाना था, अक्षय कुमार जी का गाना नहीं था। और आप जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उसमें भले अक्षय कुमार जी को दिखाया जा रहा है, लेकिन वो रियल में एग्जैक्टली में अक्षय कुमार जी का वो सॉन्ग नहीं है, इसलिए उसको मैंने कर दिया था रिजेक्ट। आप उसके लिए उसके पीछे मत पड़े रहिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको मानिए। आरिफ सिंह जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी पसंद है, धन्यवाद देते हैं उनको। और विभूति भूषण सर जी लिखते हैं कि धन्यवाद अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और ईश्वर लाल जी लिखते हैं कि जी बिल्कुल। और यहाँ पे निशांत राय जी जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है, मजा आ रहा है सुन सुन के। और मंगेश दशमुख जी लिखते हैं कि सुपर डुपर हिट लाजवाब सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ भाई, क्या करूँ, ये गाना है यानी कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की और पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की। वैसे इस गाने की डिमांड यानी किस किन दोस्तों ने किया है, एक हमारे धनेश यानी कुमार मिश्रा जी, उन्होंने इस गाने को दिल्ली से किया है। और भी देखता हूँ कि क्या कोई और भी इस गाने में शामिल है कि नहीं है, वो तो मुझे देखना पड़ेगा फिलहाल। तो इस गाने को एंजॉय कीजिए और देखते हैं और कौन से दोस्त

बिल्कुल, बहुत हसरत है तुमसे दिल लगाने की, और दिल तो लग ही गया था बहुत पहले, मतलब क्या ही बताऊं। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं, बड़े जिस कुमार जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी भाई। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ओके ठीक है ओके, और आर्य चंद्र जी लिखते हैं कि मिली जुली डिमांड, बहुत ही शानदार लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि ये कितनी हंस है तुम्हें दिल लगाने की गाना, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और राजेश कुमार जी लिखते हैं कि अब तक इन चले सभी गाने सभी सुपर हिट हुए हैं। और बागेश्वर निषाद जी लिखते हैं कि सैनिक का गाना सुपर हिट लगा है। और ईश्वर लाल मेहर लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत, अच्छा लिखते हैं कि तुम खूबसूरत हो जानते हो, हम तारीफ न करें तो क्या करें, आंखें तो कातिलाना है तुम्हारी जानती हो, हम जा निशा न करें तो क्या करें। आहा क्या बात है लाल, अच्छा अच्छा लिखा है आपने। और ये फीडबैक सुनते हैं।

0: कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। बहुत ही बढ़िया डिमांड था ये, और यूँ कहें कि कॉलेज के दिनों में जब ये गाना हम सुन रहे थे वही फीलिंग्स आई है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए अमन भैया आपको।
1: वेलकम जी आपका भी, और ज्योति भगवत जी लिखते हैं कि सभी सॉन्ग इससे बढ़कर एक सुपर हिट लाजवाब चल रहे हैं, और हुकुम चंद जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और क्या नाम है, राधा कृष्ण गोप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, सभी दोस्तों को नमस्कार कह रहे हैं। अगला जो डिमांड है संगीता अम्बुलकर जी का है, इनको आज कहना जरूरी है, बिल्कुल कह दीजिए, आज नहीं कहिएगा तो कब कहिएगा, कह दीजिए प्लीज़।

बिल्कुल, यानी किसी से तुम प्यार करो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कह दीजिए आज। वैसे मेरा जो सनम है बड़ा बेरहम है।

0: बिल्कुल, मैंने बहुत पहले कह दिया है कि मुझे तुमसे प्यार हुआ है, मेरी सुंदरता की मुराद जी, मेरी खुशी जी। वैसे फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं, बर्जेस कुमार लिखते हैं कि बेहतरीन पसंद सुनने को मिल रहा है, मजा आ रहा है सुन सुन के। और गीता शरण जी जुड़ चुके हैं सीतामढ़ी बिहार से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। भी लिखते हैं कि प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। और ज्योति जी लिखते हैं कि आज संगीता जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई, लाजवाब पसंद के लिए धन्यवाद देते हैं उनको। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: जय अमन सर जी, संगीता अमुलकर जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: बिल्कुल, ये लाइन तो जरूरी है।

और निशांत पुलिस जी लिखते हैं मेरा फेवरेट गाना है जी, अच्छा। और गजानंद जी लिखते हैं संगीता मुर्गा जी की पसंद अंदाज मूवी का बहुत अच्छा लगा है। और मुबारक हुसैन जी लिखते हैं कि अमन जी हसरत थी दिल में संगीत में डूब जाने की, जब से मिला है रेडियो हॉटस्टार में तो दीवाना बन गया हूँ। सभी दोस्तों गाने लाजवाब चल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। और ईश्वरलाल जी लिखते हैं कि अमन सर जी आपकी सादगी में जो कशिश है वो तो हमारे सबसे ज्यादा खास है, और आप इन किसी भी हीरे से कम नहीं है। ओहो क्या बात है, आपका अंदाज बेमिसाल है। थैंक यू सो मच भाई ईश्वरलाल जी। और जुड़ चुके हैं राधे राय जी, बहुत बहुत वेलकम है राधे राय जी। लिखते हैं कि नमस्कार अमन सर जी, और मैं भी जुड़ चुका हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि बेहतरीन पसंद के लिए संगीता दीदी जी को थैंक यू। अगला जो डिमांड है वो हमारे राजेश कुमार जी का है, सुनना चाहते हैं हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, हम क्या करें, क्या करें।

0: बिल्कुल, हमें तुमसे हुआ है प्यार। हम क्या करें यार, हम तुमसे प्यार ही तो करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही प्यार करते हैं। मतलब इतना कि बस मेरे पास वो शब्द नहीं है, लफ्ज नहीं है, बस बयां नहीं कर सकता मेरे पास। वैसे इस बार देखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत ही प्यार लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एम ताहिर जी लिखते हैं कि अच्छा ओके, कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पे गीता जी लिखते हैं कि सभी गाने लाजवाब हैं। और राजेश कुमार लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी गाना प्ले करने के लिए। गजानन सुनकर जी लिखते हैं कि राजेश कुमार जी के पसंद हमें बहुत ही पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए भी। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि इस शानदार डिमांड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं
1: जी, अमान सर जी, राजेश कुमार जी अपने गाने में शामिल करने को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी। और संगीता अंबुका जी लिखते हैं कि सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और फीडबैक देने वाले दोस्तों का भी थैंक यू। अगला जो डिमांड वो यानी पांच दोस्तों की है, एक तो हमारे यानी सुनील कुमार जी बांका बिहार वाले हैं, गजानन सुनकर जी के ग्रुप है उसमें नीलेश बिरोकार जी शामिल है, और मिसाल लंगा जी शामिल है, और राम गोपाल मौर्या जी शामिल है। सभी की एक ही पसंद है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, सच में तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, क्या ही बताऊं, बहुत मस्त है, जितनी तारीफ करने कम है।

0: बिल्कुल बहुत मस्त हो। और इस गाने के बाद मैं आप सबको सुनाऊंगा अक्षय कुमार जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जरूर सुनिएगा प्लीज।
1: मदम गे मरे सागर सदन स।

0: बिल्कुल तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त मस्त मस्त फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं और निशांत भाई बोलते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है और ब्रजेश कुमार लिखते हैं कि वाह मस्त मस्त गाना है सर जी, मस्त मस्त एकदम मजा आ गया मस्त मस्त। और गुगुल चंद जी लिखते हैं कि सुपर सुपर सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और मंगेश दशमुख जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग के लिए सभी दोस्तों का धन्यवाद देते हैं। गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन सर जी को प्यार भरा नमस्कार, हम सभी साथियों को गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आर्य सिंधे जी लिखते हैं कि ये पांचों दोस्तों की मिली जुली डिमांड बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: जय अमन सर जी, गजानंद सुलोकर जी और भाई भी सब भाई मिला के पांच भाई को गाने में शामिल हुए, पांचों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
0: फिलहाल

0: नमस्कार, यहाँ पे ये फीडबैक भी सुन लेते हैं, क्या कहते हैं हमारे सुनील कुमार जी।
1: अमन भैया नमस्कार, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से, और आपने मेरी पसंद का गाना प्ले किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दोस्तों का शुक्रिया है फीडबैक देने के लिए।
0: वेलकम जी आपका भी, और यहाँ पे मिसाल अंगा जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए, और एम ताहिर साहब जी लिखते हैं कि ये इन पाँचों साथियों की ये पसंद बनी एक दो ये तो लाजवाब हो रहा ही था। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जाकिर खान जी लिखते हैं कि तू चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त गाना, सच में मस्त है सर जी, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। हीरामन जी क्या कहते हैं?
2: हमारे परम मित्र गजानंद सालोकार जी, मिसाल अंगद जी और साथी मित्र की जो मिली जुली फरमाइश है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, बहुत ही सुपर से ऊपर। और मैं सुन रहा हूँ सर रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ जो दीवाना बना दे। मैं हीरामन खिराड़े वाशिम महाराष्ट्र से।
0: धन्यवाद जी आपका भी। और नीतू शरण जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब प्रोग्राम चल रहा है, थैंक यू सो मच नीतू जी आपका। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आप सबको बताऊंगा अक्षय कुमार जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी, तो सुनते हैं
3: गीत संगीत की इस महफिल में आप मिलेंगे ऐसे कलाकार से, ऐसे डांसर से जो संगीत का सौदागर है।
4: नाम राजीव हरिओम भाटिया, जिसे हम खिलाड़ी कुमार के नाम से जानते हैं, और ये हैं फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अक्षय कुमार।
5: भाई वैसे तो लोग हमें संगीत का जादूगर कहते हैं, नाम है राजा।
4: इन्होंने अपने लिए खुद ही कहा है, ना हम अमिताभ, ना हम दिलीप कुमार, ना ही किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय। फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से आया ये लड़का सुपरस्टार बना। जन्म 9 सितंबर सन 1967। अक्षय कुमार का जन्म अमृतसर में हुआ था और परवरिश हुई पुरानी दिल्ली यानी कि दिल्ली 6 में। इनके पिता हरिओम भाटिया और माँ अरुणा भाटिया। पिता हरिओम भाटिया एक मिलिट्री ऑफिसर रहे। अक्षय कुमार बचपन से ही स्टेज पर एक परफॉर्मर की तरह जाने जाते थे, खासतौर पे डांस में। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में रहते थे और उसके बाद ये मुंबई आ गए, जहाँ पर ये कोलीवाड़ा इलाके में रहने लगे। मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई और मुंबई के ही गुरु नानक खालसा कॉलेज से हायर एजुकेशन की। वो और बात है कि एक साल के बाद ही ये पढ़ाई छोड़ बैंकॉक चले गए मार्शल आर्ट सीखने के लिए। जब अक्षय 14-15 साल के थे, तब इनके वालिद ने इनसे एक बार सवाल पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, और तब अक्षय कुमार ने कहा था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मुंबई वापस आ जाने के बाद अक्षय कुमार ने मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया और अभी भी एक्टिंग की मंजिल काफी दूर थी, कोई राह नजर नहीं आ रही थी, और तब सूरज चमका। अक्षय कुमार जब मार्शल आर्ट्स की क्लासेस लिया करते थे, तब इनके एक स्टूडेंट ने, जो कि खुद एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, इनका नाम मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए भेजा। मॉडलिंग के पहले ही 2 दिनों में अक्षय कुमार को लगा, 2 दिन में जो पैसा मैंने कमाया है वो तो मैं पूरे महीने में नहीं कमा पाता, इसलिए मॉडलिंग का ही रास्ता चुन लिया जाए। बहुत सारी फिल्मों में ये बतौर बैकग्राउंड डांसर भी काम कर रहे थे, और एक दिन इन्होंने फ्लाइट मिस कर दी और किस्मत के हवाई जहाज पे ये सवार हो गए। किस्सा यूँ मशहूर रहा कि अक्षय कुमार को बैंगलोर जाना था एक एड की शूटिंग के लिए, पर ये फ्लाइट मिस कर बैठे। ये बहुत दुखी थे और सोच रहे थे कि अब क्या होगा। अच्छा हुआ कि इन्होंने फ्लाइट मिस की, क्योंकि उसी शाम जबरदस्त प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती ने इन्हें फिल्म दीदार के लिए साइन किया। हालांकि ये पहली बार नजर आए थे फिल्म सौगंध में, जिसमें जबरदस्त अभिनेत्री राखी और 1987 की फिल्म आज, जिसे महेश भट्ट साहब ने बनाया था और जिसमें कुमार गौरव स्टार थे, उसमें अक्षय कुमार मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर की तरह नजर आए थे। शुरुआती दौर में लोगों ने कहा कि लड़के के पास लुक्स तो हैं, एक्शन भी है, लेकिन शायद एक्टिंग में कमी है। और तब अब्बास मस्तान की फिल्म खिलाड़ी आई, जिसने बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाया। अक्षय कुमार खिलाड़ी सीरीज के साथ आगे बढ़ रहे थे, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, और फिर आई फिल्म मोहरा। अक्षय कुमार की इमेज एक एक्शन हीरो की इमेज बन गई थी। उसके बाद यश चोपड़ा साहब की फिल्म दिल तो पागल है में इन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया, हालांकि सपोर्टिंग रोल था, पर बहुत तारीफ की गई। यश चोपड़ा साहब की फिल्म ये दिल्लगी में भी इन्होंने एक रोमांटिक किरदार ही निभाया था, और तब ये जरूर लगा था कि ये हरफन मौला है। और फिर आई प्रियदर्शन साहब की फिल्म हेरा फेरी, जिसमें परेश रावल और सुनील शेट्टी साहब के साथ मिलके इन्होंने धमाल मचा दिया, और फिर धर्मेश दर्शन की धड़कन ने इन्हें एक इमोशनल एक्टर की तरह भी एस्टैब्लिश किया। एक बड़ा मजेदार किस्सा रहा, एक बहुत बड़ी फिल्म फ्लॉप हो गई और अक्षय कुमार शादी के बंधन में बंध गए। जी आमिर खान, फैजल खान और ट्विंकल खन्ना स्टारर मेला। अक्षय और ट्विंकल ने ये बात तय कर ली थी कि अगर मेला फ्लॉप हुई तो शादी कर लेंगे। फिल्म चल गई तो शादी कुछ वक्त के लिए रुक सकती है, और आमिर खान के होने के बावजूद फिल्म मेला बुरी तरह से फ्लॉप हुई और अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी सुपर हिट। इस तरह से अक्षय कुमार बने हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के दामाद और सासू माँ बॉबी यानी कि डिंपल कपाड़िया। इस शादी से अक्षय और ट्विंकल को दो बच्चे हुए, बेटा आरव और बेटी नेत्रा। अक्षय कुमार उन गिने चुने एक्ट्रेस में से हैं जिन्होंने हर कदम पे बहुत ज्यादा मेहनत की, फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से आए और सुपरस्टार्स की फेहरिस्त में अपना नाम शामिल कर दिखाया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मैं बता दूं कि अगला जो रिमांड में प्ले करने वाला हूं हुकुमचंद जांगड़ जी का, क्योंकि मुझसे प्यार करना है बस इतना समय ले और एंजॉय कीजिए इस गाने को। आते हैं इस गाने के बाद

0: हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय हम हैं सीधे साधे।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आए हैं और फूले बाग संजय भाजी देते हैं सर जी। ओ माय गॉड, तो देखिए एक्चुअली आजकल मैं जो भी डिमांड ले रहा हूँ सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से ले रहा हूँ और मैसेज वाले को मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मैं लिस्ट नहीं बना पा रहा हूँ, इसीलिए इसके लिए आई एम सॉरी, मैंने मैसेज आपका नहीं देखा। वैसे आप भी उस गाने में शामिल थे, बहुत बहुत आपका भी वेलकम है। और राम गोपाल मौर्य लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू सो मच। और अशोक देशमुख लिखते हैं कि अच्छे अच्छे जी के बारे में आपने जानकारी दिया, उसको जानकारी बहुत अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच। और आमना खान जी लिखते हैं कि बहुत ज़बरदस्त जानकारी के लिए थैंक यू सो मच सुपर स्टार अक्षय कुमार जी की, बिल्कुल। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि लोग रूप देखते हैं हम दिल देखते हैं, लोग तुम सपने देखते हैं हम तुम्हें देखते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि लोग पूरी दुनिया देखते हैं और हम इन पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हें देखते हैं। वाह वाह क्या बात है, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। और गजानंद जी लिखते हैं कि हुकुम चंद जागर जी के पसंद बेहतरीन लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। और हुकुम चंद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा डिमांड प्ले किया है। आत्माराम जी लिखते हैं कि खिलाड़ी ये वाला गाना बहुत ही प्यारा लगा है, खिलाड़ियों का खिलाड़ी से ओके। और आर्य सिंध जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ईश्वर लाल मेहर जी लिखते हैं कि अमन सर जी हंसी का जादू तो हर दिल पर चल जाती है, जो एक बार रेडियो हॉटेटा सुन ले वो तो दीवाना बन जाता है जी, थैंक यू सो मच। इसी बात अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो है हमारे आरिफ सिंधी जी का। आरिफ सिंधी जी कहते हैं भाई सुनिए क्या कह रहे हैं।
2: अस्सलामु अलैकुम अमन सर जी, मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, आज के स्टार चॉइस में मेरे गाने के बोल रहेंगे कमी नहीं है लड़कियों की पर तुझ पे ही दिल मेरा आया है, गाया हुआ है उदित नारायण जी, अलका याग्निक जी, विनोद राठौड़ जी, मिताली चौधरी जी, फिल्म का नाम है वक्त हमारा है, डेडिकेट रहेगा अमन सर जी आपको, आपकी सुंदरता की मूरत जी को, आरजे परमार सर जी को, आरजे वंशिका जी को, आरजे आकांक्षा जी को, आरजे सोनी जी को, आरजे रत्ना जी को, आरजे अदिति जी को और रेडियो हॉट स्टार के सभी श्रोताओं को। मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, शुक्रिया।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो होटल जो दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं मेरे पास। राधा राधे राय जी लिखते हैं कि अमन सर जी नमस्कार। अरे भाई यहाँ पे तो पहली बात की रिक्वेस्ट कीजिएगा तो आप सॉन्ग रिक्वेस्ट कीजिए और आज के जो स्टार ऑफ द वीक के मेहमान है अक्षय कुमार जी उन पर गाने भेजिएगा तभी मैं प्ले कर पाऊंगा। नीलेश बुरेकर लिखते हैं अमन जी सभी दोस्तों गाने आपने सुनाया बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ब्रजेश कुमार लिखते हैं कि बहुत ढीला जो आप सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि आर्य सुंदर जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है उनको बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए भी। और ये आत्मानंदी क्या कहते हैं
1: अमन सर जी
0: बोलिए
1: भाईजान आर्य सिंधी गांधीनगर गुजरात के इनकी लड़कियों की कमी नहीं लेकिन तुम पर दिल आ गया यह गाना हमें बहुत ही पसंद आया। शुक्रिया ऐसे गीत गाने के लिए। मैं आत्माराम पटेल लिया बुलडाणा महाराष्ट्र से।
0: ओके जी और आर्य सिंधी जी क्या कहते हैं।
2: शुक्रिया अमन सर जी मेरी डिमांड का गाना प्ले करके मुझे सुनवाया और जो दोस्तों ने फीडबैक दिया उनका भी तहे दिल के से शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ जो दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लेते हैं कि ये दिल्ली से आई फरमाइश मुंबई से आया प्यार और गुजरात यूपी बिहार एमपी से भी संदेश बेशुमार और शहर भले हैं अलग अलग दिलों में एक ही है प्यार और सबकी पसंद बन चुका है अपना रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। ओके जी और ये क्या कहते हैं
3: आरजे अमन सर जी अरिफ सिंधे जी अपने गाने में शामिल किए को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी को भी अपने अपने गाने में शामिल किए सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। और अभी तक समोसे में आलू नहीं आया है कोई बात नहीं है। फिलहाल अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ अनिशा सिंधे जी का। वैसे फीडबैक भी और हमारे पास है। यहाँ पे राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं लाजवाब डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि सभी गाने बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं धन्यवाद देते हैं। और एम ताहिर जी लिखते हैं कि श्रोताओं यानी कि दिल के जज्बात कोई समय ना आ सके मस्त लाजवाब से चल रहे हो थैंक यू सो मच आपका भी। और ओम नारायण राय लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ जी वेलकम करते हैं आपका भी। और संजू भाव क्या कहते हैं।
4: गुड इवनिंग आरजे अमन सर जी। अमन सर जी मैं फूले भक्त संजू भाव अब तक चले फरमाइश में जैसे कि अभी फरमाइश चल रही है हमारे मित्र आरिफ सिंधी जी इनके फरमाइश के पहले आपने हुकुम चंद जांगिर जी इनके फरमाइश चलाई सर और उनके फरमाइश के पहले आपने हमारे सुनील कुमार जी जो बांका बिहार से बिलोंग करते हैं उनके साथ में हमारे गजानन सालोकार जी और हमारा पूरा ग्रुप और रामगोपाल मौर्या जी और अंगद मिसार जी इन सभी की आपने मिलजुल फरमाइश चलाई सर। उनके पहले हमारे मित्र राजेश कुमार जी इनकी अपनी फरमाइश चलाई सर। उनके पहले संगीता अम्बुलकर जी इनकी फरमाइश को चलाया। उनके पहले धनेश मिश्रा जी इनकी अपने फरमाइश चलाई सर और उनके पहले एक गीत चला सर गीत के बोलते कमी नहीं लड़कों की शहर में इस फरमाइश करदा का नाम नहीं सुन पाया सर उनकी अपने फरमाइश चलाई। उनके पहले मंगेश देशमुख जी इनकी अपने फरमाइश चलाई सर। उनके पहले नागेश्वर धाकड़ जी और दीपक गायकवाड़ जी दोनों की आपने मिलजुल फरमाई चलाई सर। और उनके पहले हमारे आदरणीय सर्वेश भगत जी आदरणीय अशोक देशमुख जी और आदरणीय आत्माराम पाटिल जी इन तीनों दिग्गज श्रोताओं की आपने मिलजुल फरमाई चलाई सर। और आपका आज का ओपनिंग गीत अमन सर जी अब तक चले फरमाइश में सभी गीत सुपर और सुपर से ऊपर हुए और आज के जो मेहमान हैं सर अक्षय कुमार जी इनके द्वारा किए गए सभी फिल्में और सभी फिल्मों के सभी गीत सुपर और सुपर सुपर सर। और आज का कार्यक्रम भी हमेशा की तरह आप अच्छी तरह सजा रहे हो कार्यक्रम लल्लनटा हो रहा है रेडबुल हो रहा है सर आपकी प्रस्तुति काबिल तारीफ। सभी दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा हमें अपने गीत में याद करने के लिए और इतना अच्छा गीत सुनवाने के लिए। और आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हो रहा है मज़ा आ रहा है सर हम इंजॉय कर रहे हैं रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे आर जय मंजिक के साथ मैं फूले भक्त संजीव भाऊ धन्यवाद।
0: फिलहाल ये डिमांड अनिशा सिंधी जी का एंजॉय कीजिए। मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की पसंद सुपर डुपर हिट चल रहे हैं सभी को धन्यवाद देते हैं।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं और यहाँ पे सुनील कुमार जी कहते हैं कि भाई आदरणीय यानी कि संजू भाव जी का धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा रिपोर्टिंग करने के लिए। तो ये रिपोर्टिंग कभी कभी करते हैं, हमेशा गाय पर रह रहे हैं आजकल। गजानंद जी लिखते हैं कि हमें दोस्त की बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। और आर्य सिंधी जी लिखते हैं कि अनिता सिंधी जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है। और यानी विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि सॉन्ग तो बहुत ज़बरदस्त है, खबर छपवा दो, अखबार में पोस्टर लगवा दो, बाजार में मजा के सुन के। और ब्रजेश कुमार लिखते हैं कि सर जी गाना यानी पूरा रुक गया है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? भाई नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पे ओके है, आपकी तरफ प्रॉब्लम हो सकता है। ये फीडबैक
1: अमन सर जी बेस्ट रिपोर्टर जो कि 2026 में अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन छत्तीसगढ़ के पावन भूमि में वहाँ उनका मान सम्मान देकर ट्रॉफी देकर उनको सम्मानित किया गया, वैसे ही रेडियो स्टार के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। शुक्रिया इतनी बड़ी अच्छी जानकारी देने के लिए और रिपोर्टिंग के लिए। मैं आत्माराम पाटिल बिहार बुलढाणा महाराष्ट्र से, थैंक यू।
0: वेलकम जी। और फूले भक्त संजू भाई जी अनिशा जी की फरमाइश मुझे बहुत पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं। ओम नारायण राय लिखते हैं क्या बात है, क्या गाना है। और रवि मोहड़े जी क्या कहते हैं, जरा इनकी भी सुन लेते हैं।
2: एक खबर छपवा दो अखबार में, तरण डरण पोस्टर लगवा दो बाजार में, तरण डरण एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की है, दोनों पागल हो गए प्यार में। बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग, दिल बाग बाग हो गया, मजा आ गया सर जी,
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और अगला फीडबैक किनका है जरा सा मैं देख लेता हूँ। गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त फुलभक्त संजू भाव जी का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं उनको। और काजल झक्का जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं काजल झक्का जी। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ ये हमारे बागेश्वर निषाद जी का है, ये सुनना चाहते हैं हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे हमेशा। इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल, हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे हमेशा। जितेंद्र जी रहते हैं बहुत ही बेहतरीन डिमांड है, थैंक यू सो मच। और ब्रजेश कुमार लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और ब्रजेश कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड करें, थैंक यू सो मच। और आदिशंकर जी लिखते हैं कि गाना बहुत बहुत ही शानदार, सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात अमन जी, मैंने अपने जन्मदिन की स्पेशल रिक्वेस्ट भेजी है, आपको मिली है कि नहीं, जरा अभी मैं चेक कर लेता हूँ मिली है कि नहीं। हाँ, स्पेशल रिक्वेस्ट एक आया हुआ है, यानी कि 4 दिन बाद है। आपने 20 यानी सॉन्ग भेजे हैं, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आपने भेज दिया। यानी 15 सितंबर को आपका जन्मदिन है, आपको एडवांस में जन्मदिन की शुभकामनाएं। हाँ, मैंने देख लिया आपका गाना मिल गया है मुझे, थैंक यू सो मच। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि हम तो यानी चुपचाप थे हमेशा जी, खूबसूरत गाना है। अगला डिमांड जो मैं प्ले करने वाला हूँ वो गीता शरण जी का है। गीता शरण जी सुनना चाहती हैं हमको दीवाना कर गए, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

हमको दीवाना कर गया। वैसे यहाँ पे ब्रजेश कुमार लिखते हैं वाह वाह वाह क्या गाना है, बेहतरीन सॉन्ग सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। और बागेश्वर निषाद जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। और आर्य सिंधे जी लिखते हैं कि गीता शरण जी की डिमांड बहुत ही शानदार लगी, हमको दीवाना कर गए, मजा आ गया सुनाने का, धन्यवाद। संगीता अमरुकर लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि अमन जी जी ओके कोई बात नहीं अच्छी बात है। जितेंद्र जी लिखते हैं सुपर हिट पसंद चल रही है, मजा आ रहा है सुनकर। और सर्वजीत चंद्र जी लिखते हैं कार्यक्रम जबरदस्त चल रहा है। अगला जो डिमांड है नीतू शरण जी का है, सुनना चाहती हैं वादा रहा सनम, बिल्कुल एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल, और इसी फिल्म का एक गाना है होके मनाज मगन, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल मेरे पास फिर भी हीरामा जी रहते हैं कि ओके मैं देखता हूँ। और फिलहाल यहाँ पे अखिलेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अखिलेश कुमार जी, लिखते हैं गाना बहुत अच्छा लग रहा है। और ब्रजेश कुमार जी के सुपर डुपर हिट सॉन्ग के लिए सुनने को मिला, मजा आ गया है। और नीतू शरण जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और गजानंद सरकार जी लिखते हैं कि वादा रहा सनम गाना बहुत अच्छा लगा है, शुक्रिया इस गाने के लिए। विष्णु जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा है। अगला जो डिमांड है दो दोस्तों की, ईश्वरलाल मेहर जी की और रवि मोहड़े जी की, तो दोनों दोस्तों की ये

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बनाते हैं। बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं। गीता शरण जी लिखेंगे आपको और सभी सुनने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं फीडबैक देने के लिए। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये सॉन्ग अनसुना है और हमने नहीं सुना है, लेकिन मस्त गाना लग रहा है। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की मिलीजुली डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आरिफ संजीत जी लिखते हैं कि मिलीजुली डिमांड बहुत ही शानदार लगी है, धन्यवाद। और गजानंद जी लिखते हैं दोस्त रवि मोहर जी, ईश्वर लाल मेहर जी की पसंद बहुत ही शानदार। और ब्रजेश कुमार लिखते हैं कि बेस्ट सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। और बागेश्वर निषाद जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है। अगला जो डिमांड है वो हमारे क्या नाम है, निशान हीरामन खिलाड़ी जी का है। हीरामन खिलाड़ी जी, इंजॉय कीजिए ये गाना।

0: पर कमे को रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक मेरे पास है। सबसे पहले तो ये
1: अर्जय मनसा जी, ईश्वर लाल मेहर जी और रवि मुआले जी दोनों भाई मिर्जुली फरमाइश में शामिल किए, दोनों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम जी। और यहाँ पे ब्रजेश कुमार लिखते हैं कि वाह वाह वाह क्या बेहतरीन सॉन्ग है सर जी, बहुत मजा आ रहा है सुन सुन के। और हीरामन जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन जी को प्यार भरा नमस्कार है एंड माना पसंद धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपका भी। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि हीरामन जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है। और मंगेश दसमुख जी लिखते हैं कि हीरामन जी की पसंद लाजवाब है। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी हमारा गाना प्ले करने के लिए, और सभी दोस्तों का भी तहे दिल से शुक्रिया इतने अच्छे फीडबैक देने के लिए।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे अरुण मंडल जी सिंह और जमन जी सभी गाने मस्त चल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अगला जो डिमांड है हमारे गोविंदा खंडाते जी का है, तो गोविंदा खंडाते जी इंजॉय कीजिए तेरी बदमाशिया मेरी कमजोरियां। ओह माय गॉड।

इतना सुनो है कि आगे पीछे जाने नहीं। गोविंदा खंडादेव जी लिखते हैं, धन्यवाद अमर सर जी, आपने मेरा गाना सुनवा दिया। अगला जो डिमांड है दो दोस्तों की है, अखिलेश जी का है और निशांत रायबोले जी का है। सुनना चाहते हैं टिप टिप बरसा पानी, एंजॉय कीजिए दोनों दोस्त।

0: अमन सर जी, हमारे परम मित्र हीरामन भाव खिराड़े जी, रवि मोहाड़े जी और गोविंदा खंडाड़े जी, इन तीन दोस्तों के आपने बैक टू बैक फरमाइश चलाई सर, मज़ा आ गया। दिल से धन्यवाद, आपने इन तीनों की फरमाइश चलाई और मैं धन्यवाद बोलूँगा हमारे मित्र हीरामन भाव खिराड़े जी और रवि मोहाड़े जी, दोनों का गीत मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल से धन्यवाद इतना अच्छा गीत सुनवाने के लिए। आज का कार्यक्रम लाजवाब सुपर और सुपर सुपर रहा है, मज़ा आ रहा है सर। मैं फुले भक्त संजू भाऊ, रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे अमन जी के साथ, और स्पेशल धन्यवाद हमारे आदरणीय आत्माराम पाटिल जी, इनको, इन्होंने हमारा हौसला अफजाई किया। थैंक यू सो मच, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, धन्यवाद।
1: अगला डिमांड एम ताहिर जी का।
2: अमान खान सर, आपको मेरा तहे दिल से आदाब कबूल हो और साथ ही साथ कार्यक्रम सुनने वाले प्यारे साथियों को भी
1: आदाब, आदाब
2: मेरी जानिब से आदाब। सर जी, स्टार ऑफ द वीक में आज मैं एक गीत सुनना चाहता हूँ, फिल्म रावड़ी राठौड़ का। गीत के बोल, चिकनी कमर पे तेरी। ये गीत सबसे पहले नजर करना चाहता हूँ आपको और कायनाथ जी को, आरजे आकांक्षा जी को, आरजे वंशिका जी को और कुछ साथी है, खास करके सोनू गौतम जी, सुनील कुमार जी बांके बिहार वाले, सतीश शर्मा जी को, गौरव ठाकुर जी को, प्रिंस पासवान जी को, इदरीस हिलाल जी को, तनवीर अहमद जी को और जितने भी इस समय आपका ये मनमोहक शो या दिलकश शो कहे या जो भी अल्फाज इस्तेमाल कर सके वो भी शायद कम हो गए इस शो के लिए, क्योंकि आपकी पेशकश इस खूबसूरत शो में अपने आप में एक अलग ही है।
1: थैंक यू सो मच।
2: उनकी नजर भी है जो इस समय कार्यक्रम चल रहा है।

0: वेलकम बैक। और ये फीडबैक सुन लेते हैं सर्वेश भगत जी का, क्या कहते हैं?
1: आरजे अमन सर जी, एम ताहिर जी अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ निकी खान जी का, सुबह होने ना दे, एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल, ये देसी बॉयज का गाना सच में बहुत ही कमाल का था। थैंक यू सो मच निक्की खान जी और विष्णु चंद्र जी, लिखते हैं कि मस्त सॉन्ग चल रहा है, मजा आ गया सुन के। और आत्मराम जी लिखते हैं कि अक्षय कुमार जी के सभी गाने बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ आरजे सोनी जी, ये तो भोजपुरिया महारानी है और आज के दिन भोजपुरिया गाना, माई गॉड।

0: गाना लेकर आज के दिन आ गई हूँ। माय गॉड, मैं तो सोचा भी नहीं था पाकिस्तान शादी लेते कि आपकी पसंद लाजवाब चले। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ राहुल,
1: अश्लीलों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने। फिल्म का नाम लहू के दौरान। अमन सर जी, मुझे ये सॉन्ग सुनना है।
0: ओके जी, तो भाई राहुल पासी जी गाना मैंने सुनवा दिया। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

और यहाँ पे खुशबू जी लिखते हैं कि बहुत ही मस्त गाना है जी, वो तो गाना मस्त है ही। और साथ ही साथ दीपक कुमार गायकवाड जी लिखते हैं, अमन जी आज अक्षय कुमार पर फिल्म आया हुआ, पहली बार मैंने भोजपुरी गाना सुना है जी, मजा गया ना फिलहाल। और यहाँ पे राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं भोजपुरी गाने का तो धमाल मजा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आरजे सोनी जी को। और संगीता जी लिखते हैं कि आज सभी गाने एक से बढ़कर एक प्ले हो रहे हैं, अच्छा अगला भी सुनिए भी मजा आने वाला है। गजानंद जी लिखते हैं कि हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, गाना बहुत ही शानदार लगा है राहुल पासी जी के। आमना खान जी लिखते हैं कि सुबह होने ना दे शाम होने ना दे गाना बहुत अच्छा लगे, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और अगला जो डिमांड आमना खान जी आप ही का आ रहा है, इंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: क्या करी, वो है ही इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, मेरी खुशी सुंदरता की मूरत।
1: Relax.

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ये सुनते हैं,
1: अमन सर जी आपने मेरा सॉन्ग प्ले किया, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे गजन सरकार जी लिखते हैं कि आमना खान जी की पसंद बेहतरीन लाजवाब, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, सुनकर मजा आ गया है। और सर्वजीत सर लिखते हैं सभी गाने सुपर चल रहे हैं। और राधा कृष्ण को लिखते हैं बेहतरीन डिमांड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आमना खान जी आपका। और रवि मौर जी क्या कहते हैं,

0: जाने। ला जाओ आप सॉन्ग, मजा आ गया। सारे सॉन्ग एक से बढ़कर एक चल रहा है अक्षय कुमार जी के, मजा आ जा रहा सर जी, क्या बात।
1: धन्यवाद। और यहाँ पे यानी कि यहाँ पे खुशबू कुमारी लिखती है कि थैंक यू सो मच मैम, माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है और ये मैं गाना इतना सुनती हूँ, बहुत बार सुनती हूँ हमेशा, मुझे गाना ये बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, और मैं तो गाना गा भी रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है इस गाने को गा गा कर। ओके जी, और ये सुन लेते हैं क्या कहते हैं भाई।
2: अमन जी, जब कोई बच्चा सोता नहीं है और माँ सुला सुला के परेशान हो जाती है, वो सोता नहीं है, तो माँ सोचती है कि इससे कुछ ऐसा कुछ करवाऊँ कि ये थक जाए और थकने के बाद इसे बहुत अच्छी नींद आ जाए, तो वो लगा देती है रेडियो हॉट स्टार। और जैसे ही रेडियो हॉट स्टार पर अमन जी का प्रोग्राम आता है और गाने चलते हैं, बच्चा तुरंत खड़ा होता है, बहुत डांस करता है, उचक उचक के डांस करता है, डांस कर करके थक जाता है, थकने के बाद उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे।
1: धन्यवाद यूनु जी का सुना चाहते हैं, जाने मन तू खूब है, सच में जाने मन तू खूब है, क्योंकि तू मेरी जाने मन है।

और ये लाइन। भाई मुझे डांस करने का मन कर रहा है इस समय, मैं तो अपने कुर्सी पर ही डांस कर रहा हूँ। आहा वाह वाह।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो दीवाना बना दे तो मजा आया ना। सैयद दोनों जी, देखते हैं। थैंक यू अमन सर जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि आमना खान जी का पसंद मुझे बहुत पसंद है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे खुशबू जी लिखते हैं कि ये भी मेरा फेवरेट गाना है, मुझे बहुत पसंद है और मैं तो गा भी रही हूँ जी, इसीलिए तो मैंने कहा कि गाते रहिए। संगीता मुल्का जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग सुनने को मिल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। और गजानंद जी लिखते हैं कि जाने मन तो खूब ऐसे दोनों जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है। और राधा कृष्ण गोपी लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए धन्यवाद। दो दोस्तों की डिमांड में प्ले करने जा रहा हूँ, एक से है यानी पूजा भास्कर जी और दूसरे हैं मनीषा शर्मा जी, दोनों की एक ही डिमांड है मेरे सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया को दिल दे दिया, वैसे कुछ गाना है तो सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए। और ये गाना

देखना पड़ेगा कि ये पहले गाने को किसने भेजा था, क्योंकि अगर ये टाइमिंग मुझे समझ में आ जाएगा तो अच्छे बावन में भेजा था पूजा भास्कर जी ने, और 7:01 में भेजा था मनीष शर्मा जी ने। तो यानी कि पूजा भास्कर जी आज आपको सॉन्ग ऑफ द डे के विनर बनाया था। आपको बहुत बहुत बधाई हो, एक गाना और सुन सकती हैं।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं। विष्णु चंद्र जी, नितिन सर जी, कहाँ से ऐसे लोग गाना लाते हैं, सच में दिल खुश हो जाता है एकदम और मजा आता है। सरोजी सर लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत गीत है और तब ना बताएंगे अगला। हाँ, और यहाँ पे संदीप सुता जी लिखते हैं कि नहीं, आपका गाना प्ले नहीं हुआ है और मुझे गाना समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने यानी कि चाइना टाउन टू ऐसा कुछ लिखा था, वही उसका टाइटल था, मतलब सॉन्ग है, वह मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए गाना प्ले नहीं हुआ आपका। मनीषा शर्मा जी लिखते हैं, थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, और जितने भी दोस्तों ने गाने को पसंद किया उनको भी थैंक यू सो मच। और खुशबू जी लिखते हैं कि ये साधना सरगम की आवाज़ में बहुत ही मार्मिक गाना है और सुनने को मेरा मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं उनको। और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, पूजा भास्कर जी और मनीषा शर्मा जी, दोनों बहन मिलीजुली फरमाइश में शामिल किए, दोनों बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और राधा कृष्ण को भी लेते हैं, दोनों दोस्तों की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है ऐसा आज के, यानी कि सॉन्ग ऑफ द डे, जी बिल्कुल आपने, मैंने बना दिया है। और पूजा भास्कर लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, और ये कहती हैं कि मैं सुनना चाहती हूँ इन तेरा मेरा प्यार अमर। ओके, मैं कोशिश करूँगा आपके गाने को प्ले करने के लिए। ज्योति जी लिखते हैं कि मनीषा जी और पूजा जी की पसंद बहुत ही सुपरहिट लाजवाब लगी है। राहुल पासे जी लिखते हैं कि ये पूजा भास्कर जी की डिमांड मुझे बहुत ही प्यारी लगी, अगला जो डिमांड है मैं सुनाना चाहता हूँ, क्या नाम है इनका, ये राधा कृष्ण गोप जी, ये सुनना चाहते हैं दिल से दिल पर, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

अच्छा यहाँ पे मनीषा जी ने इससे पहले भेजा था लेकिन उन्होंने दोबारा भेज दिया था, इसीलिए उनका हो गया था देर। आपने 6:30 बजे भेज दिया था और 6:52 मिनट गया था। तो एक काम कीजिए मनीषा शर्मा जी, अब आप एक तो मैंने बना दिया है, आपको भी मैं बनाता हूँ बिना, आप भी भेज सकते हैं गाना, क्योंकि एक आपने दो बार भेजा आपका आ गया था, इसीलिए एक आपका रिलेट करता हूँ मैं। और कोई भी डिमांड करे वो एक

बिल्कुल आपका एक बार ही आया होगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे दो बार शो करा था, तो मैंने एक बार आया था यानी कि 6:30 बजे और एक बार 6:52 में, और मैंने गलती से 6:52 वाला इन प्ले कर दिया था। बाद में मैं चेक करा था तो एक और मिला मुझे 6:30 वाला, तो मैंने उसको भी प्ले करके और पहले वाला डिलीट कर दिया है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो आप यानी पहले भेजा था और एक बार यानी कि विनर बना चुके हैं, नो प्रॉब्लम। आपको भी मैं विनर बना रहा हूँ, बहुत बहुत बधाई। आपको भी एक गाना और सुन सकती है आप, बिल्कुल कोई भी, कोई जो भी आपको दिल करे वो सुन सकती हैं। और यहाँ पे बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं, और यहाँ पे खुशबू जी लिखते हैं कि मैं अभी अभी इसी गाने के बारे में सोच रही थी और तब तक गाना सुनने को मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए राधा कृष्ण गोप जी को। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि हमको तुमसे प्यार हो गया, गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मेरा गाना प्ले करने के लिए। संगीता मुर्गा जी लिखते हैं कि मनीषा जी की पसंद मुझे बहुत शानदार लगी है, और जी मुझे पता है भाई अपने वही भेजा है। और अरुण मंडा जी लिखते हैं कि अमन सर जी मैंने अक्षय कुमार के सबसे पहले फिल्म का गाना भेजा है, आपका गाना सबसे लास्ट में प्ले करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूं वो हमारे अनिल कश्यप जी का है। अनिल कश्यप जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

वेलकम बैक ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं यहाँ पे अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, और यहाँ पे खुशबू जी लिखते हैं कि अनिल जी का गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, यही होता है प्यार, और राधा किशोर को लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है, थैंक यू सो मच, और ज्योति खरवाल जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना सुनवाने के लिए।

आइसम सुनने को मिला है, मजा आ गया है। और यहाँ पे खुशबू जी लिखते हैं कि ये गाना भी बहुत खूबसूरत है सुरेश वाडकर और कविता जी की आवाज में। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और आपको सभी सभी गाने की बिल्कुल पहचान होती है। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो है हमारे किन का हजरा से, मैं देखता हूँ, यानी कि गुड्डू जी सीतामढ़ी बिहार से सुनना चाहते हैं, आज से तेरी गलिया सारी हो गई।

वेलकम बैक ऑन रेडियो ऑडियो चार्ज, आपको दीवाना बना दे। और मुझे तो भाई ऐसे तो यानी मालपुए मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है काजू कतली। बहुत मन कर रहा है खाने का यार। यानी कि विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही मस्त गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और साथ ही साथ यहाँ पे अरुण मंडल जी लिखते हैं कि अमन सर जी, मैं यानी शुरू से लेकर मैं लास्ट तक आपका कार्यक्रम मैं सुनता रहता हूँ क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी में रहता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मनीषा समझ लेते हैं कि बेहतरीन सॉन्ग के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच ज्योति जी। अगला जो डिमांड है मैं प्ले कर रहा हूँ किन का, शाहिद अंसारी जी का। शाहिद अंसारी जी, इंजॉय कीजिए अपने गाने को।

और मेरे पास आधे घंटे का समय है और मैं इस समय से ओपन कर रहा हूँ आरजे आकांक्षा जी का डिमांड के लिए। आप चाहें तो डिमांड कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपसे सभी से कहूँगा कि हारे दिल के मतलब रोमांटिक गाने होने चाहिए। अगर इन सैड गाने भेजेंगे तो उसमें भी अपने दिल का वो बात बताकर ही आपने रिक्वेस्ट करना है। सिर्फ गाने नहीं भेजना है, हारे दिल मतलब हारे दिल, अपने दिल की हाल बताते हुए गाने की रिक्वेस्ट करनी है। पूरी

एक बार मैं फिर बता दूं कि आरजे कंसा जी के लिए लाइनें खुल चुकी है। आप वहाँ पे अपने गाने की डिमांड अपने दिल का हाल बताते हुए कर सकते हैं। अगर ऐसे गाने की डिमांड करेंगे तो वो रिजेक्ट कर देंगे बिल्कुल। मैं पहले बता देता हूँ जहाँ पे यानी कि आरजे को मैसेज वहाँ पे लिखना है, उनके मैसेज जरूर लिखे, अपना मैसेज जरूर लिखे, जो भी दिल की बातें हैं जरूर वहाँ पे शेयर कीजिए ताकि वो आपके गाने को सम्मिलित करेंगी। और बॉलीवुड वाले गाने भेजने हैं, रोमांटिक सॉन्ग भेजने हैं। ज्योति फरवरी जी लिखते हैं कि अमन जी अभी आपने जो साथ में गाना गया था आज से तेरी वाला गाना माइंड ब्लोइंग रोंगटे खड़े कर दिए। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। और सोहेल जी जुड़े हुए भाई, बहुत बहुत वेलकम है। सोहेल जी लिखते हैं कि गाने बहुत मस्त प्ले हो रहे हैं। राकेश शर्मा जी लिखते हैं कि भाई शाहिद जी के पसंद बहुत अच्छी लगी, बहुत

0: फिलहाल मेरे पास फीडबैक बहुत सारे आए हुए हैं और यहाँ पे शाही जी देते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए एंड विनर बनाने के लिए। और यहाँ पे विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मेरा भी गाना प्ले करने के लिए। और अजय भगत जी लिखते हैं ब्यूटीफुल खूबसूरत गाना चल रहा है। और यहाँ पे खुशबू जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, थैंक यू सो मच आपका भी। और यहाँ पे अनिल कश्यप जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, सारे लिसनर्स के गाने पूरे पूरे बज रहे हैं पर मेरा गाना आधा आधा भी नहीं कहा जा सकता, अंतरा भी आधा से कम ही बजा, तो क्या इतना भी खराब तो मेरा
0: खराब गाना नहीं था भाई, आप ऐसा मत समझिए, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए जो मतलब है कि आपका खराब गाना होता तो आपका फीडबैक नहीं आता, बिल्कुल है कि नहीं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए प्लीज। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ और किनका आपने मुझे भुलवा दिया ना।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ऑफ द वीक शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार अंतरा मस्ती में सुनिए दिए गए अंतरे पर आधारित गाने। लाइव शो में पार्टिसिपेट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जो है 91-35-84-12-32 यानी 9135841232। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: ओके, जो अगला जो गाना मैं अभी इन प्ले कर रहा हूँ, वो आज के जो इन विनर बनी है मनीषा शर्मा जी, उनके गाने के ऊपर।

और मैं अभी आप सभी से कह रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ इन्हें गाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं आरजे कांसा जी के लिए, आरजे कांसा जी के पास जो अपनी बातें भी साथ में रखिए, उसके बाद उसी में गाने की डिमांड कीजिए।

0: मैं बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास, और यहाँ पे मंगेश जी पूछ रहे थे कि अमन जी आज के सभी गीत बहुत बहुत लाजवाब लगे हैं, और आत्माराम पंडित जी क्या कहते हैं।
1: अमन सर जी, जाकिर खान सर जी की फरमाइश कभी भी बेहतरीन रहती है।
0: जी जी जी,
1: आज भी उनकी फरमाइश अतिशय अप्रतिम है। शुक्रिया उनको मैं आत्माराम पंडित, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका भी, और यहाँ पे तनवीर आलम जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग सुनने को मिल रहा है, और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ज्योति खड़ोरा जी लिखते हैं कि मनीषा जी की पसंद मुझे सुपर हिट लाजवाब लगी है, और जागृत खान जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी गाना प्ले करने के लिए, और पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि अमन जी थैंक यू सो मच, इस गाने को जितनी बार भी सुनो दिल नहीं भरता है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी, और फिलहाल अगला जो डिमांड है मैं प्ले कर रहा हूँ, नाम है उनका संदीप एंड गवाई। इंजॉय कीजिए, हाँ मैंने भी प्यार किया।

0: जी आपसे मैं बता रहा हूँ संगीता अम्बुलकर जी कि क्यों किया गया है रिजेक्ट, क्योंकि उस जो भी गाने की डिमांड करना है उसमें अपने दिल की बात बताकर सिर्फ गाने को नहीं भेजना है, सिर्फ गाने नहीं भेजना है, गाने के साथ अपनी फीलिंग, आप वो गाना क्यों सुनना चाहती हैं, इन किसके लिए सुनना चाहती हैं, उस यानी कि गाने के पीछे अपनी स्टोरी को लिख कर भेजना है, अपने हाले दिल को भेजना है, तो आपके गाने को प्ले किए जाएंगे बिल्कुल, इसलिए वह गाने हो रहे होंगे रिजेक्ट। तो आप जो भी दोस्तों का गाने रिजेक्ट हो रहे हैं अपने गाने की डिमांड फिर से करें अपने दिल का हाल बताते हुए, क्योंकि नाम ही है प्रोग्राम का हाले दिल, जब तक आप अपने दिल का हाल नहीं बताएंगे आपके गाने कैसे प्ले होगा, चाहे वो सैड सॉन्ग हो चाहे रोमांटिक सॉन्ग ज़्यादा भेजिए मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा। फिलहाल मेरे पास फीडबैक सुनते हैं इसको।
1: अमन सर जी, आज का कार्यक्रम आपने बहुत ही अच्छी तरह सजाया, आपके प्रस्तुति काबिले तारीफ, मैं आपके मेहनत को सलाम करता हूँ, बहुत ही उम्दा आज का आपने कार्यक्रम सजाया, और आज के बेस्ट सॉन्ग के विनर मनीषा जी और पूजा जी दोनों बहनों को हमारे पूरे फुले परिवार की ओर से विनर होने की ढेरों ढेरों बधाइयाँ। आज का कार्यक्रम एकदम लल्लनटाफ हुआ है, मज़ा आया है सर। मैं फुले भक्त संजू भाऊ, रेडियो स्टार जो दीवाना बना दे, आरजे मंजी के साथ धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी। और इसी बात पगला जो मैं और आखिरी डिमांड में प्ले करके जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा था कि क्या नाम था उनका, अरुण मंडल जी का, अरुण मंडल जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना, और इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे या 6:30 बजे, तब तक शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबके बाय बाय।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

लोगों से। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

ना ऐसे ठोकर तेरा पैर फिसल जाए, है कितनी नाजुक तू है, संभल ओए मोच ना आ जाए। मारना ऐसे ठोकर तेरा पैर फिसल जाए, है कितनी नाजुक तू है, संभल ओए मोच ना आ